ब्रह्मा मुरारी स्थिपरंतकारी धनु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके

यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेव आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शृणमहं प्रपद्ये ॐ शयनावतु शयनौ भुनक्तु शवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बकण्ठं स्मितसवगमुखं स्वाद्रे निस्वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतविरतं।

0: बात गर्छु तु
1: इटो दसैँ हो नच्न गैना रमैना हो अपन कलश स्थिति गजैना हाम्रो उधर के जाप कलेसे हमार भैया बाबू के कासे हमरे एक अर्के हिमाय करते मजा ले भोज करके जापना उड़ान न काजे अब चाइना।